0: हर रखन हारा रखन हारा।
1: श्लोक महला दूजा, एक नहीं दाता पस्ते जो पाई है, नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले।

0: अपने कर्तबा
1: जिया अंदर जियो सबके जान ला सबके तेरे वास तेरा कर भला तेरे कर आनंद

0: उजले कीती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी के पातशाह दसवें प्रथम भगौती सिमरका गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जस डठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया सोहा साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ किता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुरबानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। पंजा तखता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवा। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसिया रियाए। तो देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान परोसा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ, ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਬਾ ਦਾ ਚੌਂਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ।

मन चिंदिया फल पाया। प्रभ अपना सदा त्याया, गुर अपने बलहारी, जिन पूरन पैज सवारी। मन चिंदिया फल पाया, प्रभ अपना सदा त्याया, संत हो तिस बिन अवर न कोई, करण कारण प्रभ सोई। रहा प्रभ अपने वर दीने, सगल जीव वस कीने, जन नानक नाम त्याया, तो

0: रंग परंग निकना जापन करतबा जिया अंदर दियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला तेरे करना दबदाए तुद कर माण महता ते जपना अपजर सर्व कला भरपूर दे सजत कता नानक दा संदास तुदे आगे बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा द्वैदाई दाया खेल सगल जगत चंगियां बुरियां वाचै धर्म है दूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले खेती।

आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले एती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपई। हमरे करो हादर अच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहा हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम काहो, आप हाथ दै मुहे बचाओ। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करियै, सबैन को आसंगरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाद मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तोज जो करिहो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो वध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्तूला, सा पर कृपा दिष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धर तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरालम। निरंका निर्विकार निलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर कैठा। सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दा साह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह, सज्जन सच्चा पात साहो, सिर साह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह। सत

आप है आप मिलाया, कहो नानक सर्ब थोक पूरना, पूरा सतगुर पाया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन भगत वशल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाउ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगै न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। रहाओ राख लिए तेन रखनहार, सब व्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पाई प्रभ पय सहाय। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है, करते का होए विचारो, तित कार गाव हो सोहेला। सिवरे हो सिर जनहारो, तुम गाव हो मेरे निरपाऊ का सोहेला। पाऊ वारी जेत सोहेला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दान कीमत ना पवै, तिसदा ते कवन सुमार। संबत साह लिखिया, मेल कर पा बहु तेल, देहो सजने असी सड़िया। ज्यो हो वै साहिब स्यो मेल, कर कर एहो पहुचा। सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया। नानक से देह आवन, राग आसा महला पहला। छेओ कार छेओ गुर छेओ उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए। रहाव विसोए चसिया कड़िया पहरा, थिते वारी माह हुआ। सूरज एको रुते अनेक, नानक करते के ते वेस। राग तनासरी महला पहला। गगन मैथाल रब चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तो हे कहो, सहस मूरत नना एक तो ही। सहस पाद बेमल नान एक पाद, गंध वेन सहस तब गंध एव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, ते सुद चानण सब मह चानण होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभ हित मनो, आन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देहे नानक सारिंग कव, होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मान हार लेव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर डंडा उत पुन वड्डा हे। रहाओ
ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲ ਹੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ ਹਾਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜਹੁ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹੇ ਵਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ।

वाहे गुरु साहिब जी, दंडौत बंदन अनक सर्व कला सम्रथ, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। नौ प्रभात शब्द ते आइए, छोड़ो दुनी परिता, प्रणवत नानक दासन दासा, जग हारे आ तिन जीता।

थल वरोले बहुत अनंत लाटू मधानिया अनगाह पंखी पौंदिया लैन ना साहा सूए चाड़ पवाइया जंत नानक पौंदिया गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पया कीर्तन चै सब कोए नच नच हसै चलै सिरोए उड़ ना जाई सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन्ना मन पाओ पौड़ी।

0: सो जाने करतार पौड़ी।
1: बिन सतगुरु की नैना पाया, सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाया सुनाया, सतगुरु मिली सदा मुक्त है जिन विच मुझ चुकाया, उत्तम है विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया,
0: गुरमुख

0: जे आवे कह ते आवे महला दूजा।
1: हो मैं यह जात है, हो मैं कर्म कमाहे, हो मैं यही वंदना फिर जो नहीं पाहे। हो मैं कितों उपजै किस में जाए, हो मैं कुमह पै कृत फिराए। हो मैं दीर्घ रोग दारू पीसनाहे, कृपा करे जी अपनी तां गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनो, इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव कीती संतो खाई। जिन सचो सच ते आया उन्नी मंदे पैर न रखे, कर सो कृत धर्म कमाया उन्नी।

कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़।

योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है, खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है, सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नानक ता का दास है, सोई निरंजन देओ महला दूजा। ए कृष्ण सर्व देवा देव दवाता आत्मा आत्मा।

अमर सतगुर थिर किया अमरदास अमृत छतर गुर राम दिया गुर रामदास दर्शन

अंत न पावत देव सबे मुन इंद्र महाशिव जो करी। सुन वेद बरंच बचार रहे हो हर जापना छाड़े हो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी। रामदास गुरु

प्रेम अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद ते मत चूके रे मन भेद बपे।

0: पूर्व निर्वास निवास लियो। जब लो नहीं पागल लार उदे, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बूढ़े थे, कबू मिटे नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: कल समुद्र पे रूप प्रगट, हर नाम उदाहरण। बसे संत जिस हृदय, दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार, तास बिन अवर न कोई। मन बच जिन जानियो, पयो तह समसर सोई।

0: हाथ धरियो।
1: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास पियूस पिवन की, बंछत सिद्ध को बिद मिलायो। पूरन पाओ मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो धन दिस्तायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जलन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।
2: सच नाम कर तारे, सोदर नानक संग रहो। ताते अंगद रहना प्रगट, तास चरने लिव रहो। तित कुल

दिया दिखाए, यह तन अखुट न निखुट न जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर का सदबल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई, से धनवंत हर नाम लिव लाए, गुरपुरै हर धन परगासिया, हर कृपा ते वसै मन आए, रहा

हुआ नाव खुदाई अलह भया। नील बस्त्र है कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद होए सचियार पड़े गुण तीन चार विचार। पाओ भगत करनी च सदाए

बोलो जी वाहि गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समरकंद।

राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौं श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याइयाय जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता

0: हर नाम तराए, नाम तराए।
1: श्लोक महला पहला, दया कपा संतोष सुजत गंडी सतवट, ए जने उजी काही ता पांडे कत, ना ए टुटे ना मन लगे, ना ए जले ना जाए, तन सुमन सनान का जोगल चले पाए। चौकड़ मूल अनाया बै चुके पाया, सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्रह्मण थिया, ओ मुआव छड़ पया वितगा गया महला पहला।
0: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल, लख ठगियां पैनामियां रात दिन सजीना, तग कपा हो कतिए बामन वटे आए, कोई बकरार न खाया सबको आखे पाए, होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर, नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला। नाए मन्या।

श्लोक महला पहला गो ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तर न जा धोती टिक्का तै जप माली थार मलेशा खाई अंतर पूजा पड़क।

0: नानक गैसो मिले जिखटे काले दे महला पहला।
1: ज्यों ज्यों रुसरनावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर। सुचे ना आखिए बैन जे पिंडा तोए सुचे सही नानका जिन मन वसया सोए।